क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मैंने अगर इश्क का इजहार किया आपसे प्यार।

0: क्या हुआ मैंने अगर इश्क का इजहार किया आपसे प्यार किया
1: आपने क्यों

है खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।